0: स्टारमा राजीनामा दिएपछि गत साता उपनिर्वाचनबाट सांसद चुनिएका एन्डी वर्नमले उक्त पदमा दावी गर्ने बताएका छन्। डाउनिङ स्ट्रीट बाहिर पद त्याग गर्ने घोषणा गर्दा स्टारमरले पदमा बहाल हुँदा गरेका सबै निर्णय आफूले माया गर्ने देशलाई अगाडि राखेर गरेको बताएका थिए। बीबीसीका विवरणमा आधारित रिपोर्ट फणिन्द्र दाहालबाट।
1: डाउनिङ स्ट्रीटमा बोल्दै सर कियरले अर्को आम चुनावमा लेबर दललाई नेतृत्व दिन आफू उपयुक्त अवस्थामा नरहेको भन्दै पद त्याग्ने बारे राजालाई जानकारी गराएको बताएका थिए। स्टार्मरले पार्टीबाट नयाँ नेता नछानिन्जेलसम्मका लागि पदमा बहाल रहने पनि बताए। गत साता उपनिर्वाचनबाट सांसद चुनिएका एन्डी बर्नम स्टार्मरको उत्तराधिकारी बन्ने ठानिएको छ। सोमबार संसद पदको औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण गर्नु केही घण्टा अघि बर्नमले आफूले पार्टीको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका थिए। तर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सेप्टेम्बरको प्रारम्भसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। केयर स्टार्मरको सत्ता ढलेपछि विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टीका नेता केमी बेडनकले लेबर पार्टीलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै ब्रिटेनले भोगिरहेका संवेदनशील मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान गरेकी छन्। उनले तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधनका लागि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्ने बताइन्। उनले तत्कालै आम चुनावको भने माग गरिनन् जुन दक्षिणपन्थी युके रिफर्म पार्टीले गरिरहेको छ। सन् 2020 सर केयर लेबर पार्टीको नेता चुनिएका थिए र सन् 2024 उनको पार्टीले आम चुनावमा ठूलो जित हासिल गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर उनी इतिहासमै छोटो कार्यकाल सत्ताको नेतृत्व गर्ने लेबर नेताका रूपमा पदबाट बाहिरिँदैछन्।
0: यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
2: On arrive à une situation que je qualifie toujours d'équitable. Il ne s'agit pas de se regrouper contre un système ou contre un groupe, mais il s'agit de se regrouper pour que la répartition des gains soit équitablement faite.
3: Et on va finir avec cette question. Quelles sont, selon vous, les priorités pour que l'Afrique cesse d'être seulement un fournisseur de matières premières et devienne un acteur majeur de l'industrie mondiale du cacao au cours des prochaines années?
2: Alors, sans hésitation, il faut premièrement des décisions politiques. C'est un courage politique des leaders, des représentants de pays qui disent « bon, ça suffit, après 60 ans ou même plus pour d'autres, le moment est venu aussi de transformer ». Et ça, c'est une décision politique qui peut ne même pas être basée sur des raisonnements trop scientifiques et autres, mais qui se dit « là, c'est bon, on peut changer de paradigme ». Et cette décision politique va se transformer en changement structurel, et donc sur le plan de la réglementation, sur le plan des lois, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à partir de là, la levée de fonds et autres peuvent être une dernière option, mais qui pour moi ne constitue pas un blocage réel. Quand un produit se vend très bien comme le cacao, puisque de toutes les façons la demande est de plus en plus forte, étant donné que le bloc asiatique devient consommateur suffisamment de chocolats et autres, on ne peut pas s'estimer que du jour au lendemain, la demande de cacao souffrira.
3: Monsieur Mombog, merci d'avoir répondu aux questions de BBC Afrique.
2: Merci bien. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous et les auditeurs sur cette question importante qui intéresse beaucoup de personnes en Afrique.
3: Merci. Merci beaucoup.